0: A pu aussi, j'ai pu participer à une petite installation vidéo. Pour établir ce dialogue, je vais revenir sur une archive qui est sur votre site, qui avait, je crois, qui avait pris place à l'occasion d'une marche aussi nocturne, un petit peu différente.
1: Allora, lo giorno se ne andava e l'aereo bruno toglieva gli animali che sono in terra delle fatiche loro e io sol uno, ma apparecchiava a sostenere la guerra. Sì del cammino e sì delle pietate che ritrarrà la mente che non erra, o muse o alto ingegno or m'aiutate, o mente che scrivesti ciò che io vidi, qui si parrà la tua nobilitate. Io cominciai, poeta che mi guidi, guarda la mia virtù, se ne può sempre.
2: En même temps, je suis en train de voir que AB, BC, c'est quand même un angle droit.
3: Oui, c'est un angle droit. En fait.
4: Mais ça tourne pas. Alors, c'était l'avant-dernière chance. Tu connais ou non? Oh, oh, mais c'est
5: Most éppen a scrapot nézzük, és nem emlékszem már teljesen, hogy melyik résznél, de azt hiszem, hogy a főszereplők közül ketten éppen valami viccelődtek, de...
6: Nányi gyundó Medina. A Medina, drányra fel a magában van nyárját, nyertját. Tehát úgy gyögyő fog tudni, hogy dem gégyavaj. Igen, jó, hogy fofla commencé jangi dugu école pour la commencé jang français après alors bien
7: mais तो आज की क्लास में हम हिंदी पर बात कर रहे हैं, हिंदी फिल्मों पर बात कर रहे हैं, और मैं दाफने से पूछती हूँ कि आपने कौन सी हिंदी फिल्म देखी है और क्या आप हिंदी में उस फिल्म के बारे में कुछ बोल सकती हैं?
8: बाजारे को जेहत में नवे बातमान है, ये बातमान है गैलेक पेट्रोल है ये. او آوا دیجله جناب ده در باست به لباتمانه من گله که بری ادیا خواه کریه جبر که سه ساله از می کارم بچم باجاره خواه جبر که من کلیتی براسی از خود بخواه جن ادیا خواه بگیرم بسید که